0: जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है।
1: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve Agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
2: राठौर चारों मती मैं कीधु तू हेलो पेचे मा जो के ने बच्चे हमें पेशेंट जोता था ने हमें रिकॉर्ड करू कितने ऊपर रास्ता में अच्छे
3: वो रोक रहे थे पर अब हम ऊपर से फोन आया कि आपको उधर पहुंचना ही पड़ेगा ये फटाफट जवा दो अब क्या है रोकता नहीं फटाफट जवा दो।
1: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for Agarias.
4: આ પ્રસંગ પતી ગયા પછી રણમાં અગરિયાઓની આ લોકો સેવા કરે એમાં અમે વાંધો નથી, પણ અમારી એક એવી રજૂઆત છે કે જે ઝીંઝુવાડા ગામની જે ગાડી ફાળવેલી છે એ છેલ્લે 6 મહિનાથી અમદાવાદમાં રિપેરિંગ પડી છે અને એના કારણે અગરિયાનો જે સુવિધા મળવી જોઈએ મળતી નથી.
1: એઝ વી લીવ ધ વાન્સ ડ્રાઈવર ચિંતન પુલ્સ અસ અસાઇડ.
5: મેં આયા 17 સાલ હોય, સ્ટાફ પૂરા કભી ભરાઈ નહીં. આપ દેખતે હો તો અંદર સે રોના આતા હૈ કે એસે આદમી ઇતને हमारे देश के लिए हमारे लिए इतना मीठा जो खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए मीठू मीठा नहीं होगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगी. वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, मतलब हमारे हाथ में नहीं है. हम
1: टू फाइंड आउट हाउ वाइड स्प्रेड दिस प्रॉब्लम इज वी ट्रैवल अबाउट 100 किलोमीटर्स टू गुजरात्स वेस्ट कोस्ट वेयर थाउजेंड्स मोर वर्कर्स हार्वेस्ट सॉल्ट. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
6: आपको वहाँ पे जाके outreach करना है, community के साथ काम करना है, ठीक है? चलो.
1: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
7: बस, thank you.
6: तो ये केस में क्या इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं तो हम जहाँ जब भी आते हैं तो इनको हम सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं और जो इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं.
1: At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.
8: तातर क्यों है तेरा? रोजू क्यों है?
6: वो खंजोरा है तुमने?
8: खंजोरा है ना उठा है.
6: क्या क्या चाहिए? बेहात मचे?
8: बात माँ.
6: बताओ.
8: મટી જાન થાય મટી જાન થાય
6: શું કામ કરો તમે? અગર મીઠામાં જેવન થાય કોજે
8: મીઠામાં બંધ નગર કીરો ધંધો અમારે.
1: ડોક્ટર્સ સે પ્રોલોંગ્ડ એક્સપોઝર ટુ સોલ્ટ કેન લીવ વર્કર્સ વિથ ક્રોનિક સ્કિન ઇન્ફેક્શન્સ ક્રેક્સ બર્ન્સ એન્ડ પેઇનફુલ લેઝન્સ.
6: હવે તમને દવા આપું, તમે રેગ્યુલર કરજો, એનાથી ફરક ના પડે તો એકવાર પીએચસી આવજો, પીએચસી મીઠી લો કાં તો પછી ચામડીના ડોક્ટરને એકવાર બતાવવું પડશે.
1: અધર કોમન કમ્પ્લેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ ક્રોનિક પેઇન, deteriorating eyesight and reproductive health complications. But the doctor says there's only so much he can do.
6: वो हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है नहीं, रिसोर्सेज कम बढ़ रहे हैं, वो थोड़ा इश्यू रहता है. हाँ, ऑलमोस्ट हर जगह पे इश्यू है.
1: Shortly after the storm, we visit Kishan's family again. His son Rudra is preparing for an important exam.
9: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है?
10: गणित.
9: जब आप रण में होते हो पढ़ाई करने में मुश्किल होती है?
10: हाँ, यहाँ लाइट नहीं होती इसलिए दीवे से करना पड़ता है, पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए.
1: वॉचिंग रुद्र स्टडी ब्रिंग्स बैक डिफिकल्ट मेमोरीज फॉर किशन.
11: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत नहीं करता. और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है, मेहनत करने से कोई वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है, और ये मेहनत नहीं है, ये मजदूरी है.
10: पगला ना एमना तरफ बढ़िया.
1: द नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र गेट्स रेडी फॉर स्कूल. इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक अवे फ्रॉम द फैमिलीज हट.
12: Bye.
1: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass.

0: That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So the Gujarat government has set up about 24 bus schools for Agaria children.
1: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
0: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
2: वहां अलग-अलग साहब होते हैं जो 1 से 8 ધોરણ કો બનાતે હૈ. ઓર વહાં અચ્છે સે સમજાયા જાતા ઓર દરેક વિષય મે. ઓર યહાં ઘડીએ ઓર એસા આલતે વિષય પે નહીં આલતે.
0: There are no desert schools for older children.
1: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ आईक्यू पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते.
0: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agarias.
3: तब पार्टी हार छाप करता नहीं हो जो पार्टी हमारे एकदम चोखा छाव जी एक तो उड़न है असल.
4: और ये सब बैग कहाँ जा रहे हैं सर?
5: ये यूपी में एमपी में.
4: ये सब आपका है?
5: सब यहाँ से ये दीवार से वहाँ लास्ट तक मेरा है. करीब 10,000 चौरस मीटर की जगह है.
0: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
5: नमक का प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड ज्यादा रहती है तो आज के समय में डिमांड अच्छी है. पूरा एरिया ढेर बन जाएगा. करीब 17-18 लाख टन नमक यहाँ बनता है.
0: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
6: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है. इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउच की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम.
0: Most agarias never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
6: अभी तो अपने पास मान लो एक ब्रांड है, कभी 10 ब्रांड हो तो सबके इक्के जी आपके जी दोनों मिलेगा.
0: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay agarias more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
5: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है वो सही ढंग से सरकारी मैनेज नहीं करती. यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का, आरोग्य का, उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते.
0: Back in the desert, families like Kishan's are still waiting for help.
7: चलो हवे आपणे दाबे जाइए. बरोबर अहीं मीटिंग राखेली है.
8: सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर लेकिन सरकार कुछ करती नहीं. यही कुछ पता नहीं चलता. हर बार ऐसा, हर साल ऐसा होता है लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है. अब इस बार भी मीटिंग है. अब मीटिंग में हम जा रहे हैं. अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती.
9: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नो से अमारा यासु.
0: The meeting has been organized by a group advocating for agaria rights. Harinesh Pandya and his team have travelled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
10: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता तो इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने suicide कर लिया हो. लेकिन इनका जो जिगर है ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है community की अगर या community पूरे राण के अंदर देखें तो करीब करीब 80 करोड़ के आसपास.
11: Huge loss.
10: Huge loss है. और अगर ठीक से पूरा अगर हमें लगता है हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान.
0: The group is calling for a disaster relief policy similar to the compensation schemes available to Indian farmers affected by extreme weather.
12: एक बात चौकी स्पष्ट करी
11: के रेवेन्यू विभाग